0: शुक्लागंध की एफएम 97.6
1: शुक्लागंध की टाइम चेक
2: यति बेला बिहानको ठिक 11 बज्यो।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वहीं जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी,
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए, चलिए